0: ये सारे चीजें मेरे ही नेस्ट में हैं।
1: ना,
0: कम ऑन। ये भी नाम दे चाहते हैं।